गावड़ी सुखमनी महला पंचमा सरोग एक ओंकार सतगुर प्रसाद हाथ गुरु नमः जुगाद गुरु नमः सतगुरु नमः।

यात्रा सफली करनी गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। जिन्हां जिन्हां गुरमुखा वालों गुरु महाराज जी के हजूरी विच भेटावां हाजर होईयां उन्हां गुरमुखा नूं गुरु महाराज जी के हजूरी विच सिरे पाव की बख्शिश होवेगी। सिरे पाव लैके गुरु महाराज जी दीयां खुशियां प्राप्त करो जी। सात संगत जी, श्रीमान संत बाबा हरचरण सिंह जी नानकसर कुटिया त्रिपड़ी पटियाला तों अते समूह सात

साहब जी दे निरंतर 25,00,000 पाठ करन वास्ते इह जाप चल रहे हन। अज पाठां दी समाप्ति उपरंत सोहणे दीवान सजणगे। दीवाना दी समाप्ति तो बाद गुरु के लंगर अतुट वरतणगे। सो समूह संगतां नूं बेनती है समय सिर हाजरियां भर के गुरु महाराज जी दीआं खुशियां प्राप्त करो जी।

दे गज के करक जावे सोनिया लो जावे सत श्री अकाल गुरबर अकाल देख दे फतेह गुरु पंच खालसे दिनों दिन चढ़दी कला रखनी जी महाराज।

पाल हरिय पाल हरिय छेद हरिय भेद हरिय जंत्र हरिय मंत्र हरि सो तेज हरिय तंत्र हरि अजात हरिय पाद हरिय मित्र हरिय मात हरिय रोग हरिय सोग हरिय भरम हरिय कर्म हरि अजय हरिय भय हरिय भेद हरिय छेद

पतास्तु हि चतस्तु हि ऊर्ध्वस्तु हि भजस्तु अंग रटस्तु अंग टटस्तु अंग जिमीतु हि जमातु हि मकीतु हि मकातु हि।

त्वा प्रसाद कपित खूक मल हारि गज गद विभूत दारि गिद्वा मसान बास करे हुई करत है खूक मट बास लग डोलत उदास मृग तरवर सदीव मोन साधे मरत है बिंद के सथैयता ही जिकी बडैया देत मंदरा सदीव पाए ना गई फिरत है अंगना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक ज्ञान के विहीन छीन कैसे के तरत है भूत बन चारी छित छौना सब दूधा धारी पौन के आहारी सो भुजंग जानियत है तृण के भुछैया धन लोभ के तजैयत तो गौवन के जैया प्रिंक भैया मानियत है नभ के उड़ैया ताहे पंछ की बडैया देत बग गुलाब डाल ब्रिक ध्यान ठानियत है जेते बड ज्ञान तिनो जानी पे बखानी ना है ऐसे न प्रपंच मन भूल अनियत है भूम के बसैया ताहे भूचरी गजैया कहे नभ के उड़ैया सोच रैया कह बखानी है फल के बछैया ताहे बांधरी गजैया कहे आद सफिरैया तत भूत कह बछनी है जल के तरैया को गंगे ऋषि कहत जग आग के भुछैया सो जकोर सम मानी है सूरज सिवैया दाहे कौल की बटाई देत चंद्रमा सिवैया को कवि के पहचानी है नारायण कछ मछ तेंदुआ कहत सब कौल नाभ कौल जे ताल में रहत है गोपीनाथ गुजर गोपाल सब थेन चारी रिखि के सनाम के महंत लहियत है माधव भवर ओ अड्डे रुको कन्हैया नाम कंस को पथैया जम दूत कहियत है मूड रूड पीटत न गूढ़ता को भेद पावे पूजत न ताहे जाके राखे रहियत है विश्वपाल जगत काल दीन दयाल पैरिसाल सदा प्रतपाल जम जाल ते रहत है जो कि जटा थारी सती साचे बड़े ब्रह्मचारी ध्यान काज भूख प्यास देह पैसहत है न्योली करम जल होम पावक पवन होम अधमुख एक पाए ठंड न बहत है मानव फनिंद देव दानव न पावे भेद भेद यक देव नेत नेत कह कहत है नाचत फिरत मोर बांदर करत घोर दामनी अनेक भाव करो ही करत है चंद्रमात शीतल न सूरज तपत तेज इंद्र सोना राजा भव भूम को भरत है शिव से तपस्याद ब्रह्मा से न वेदचारी सनत कुमार सी तपस्या न अनत है ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिराई फिरत है एक शिव भय एक गए एक फेर भय रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है ब्रह्मा और विष्णु कितने वेद और पुराण कितने सिमृत समूहन के होए होए बिताए है मोन दी मदार कित अश्विनी कुमार कित अंसा अवतार कित काल बस भय है पीरे और पिगंबर कित गन न परत एत भूम हित होय के फेर भूम ही मिलाए है जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र ही की छाया गई कोस लो चलत है बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रप को दलत है मान से महीब और दिलीप कैसे छत्रधारी बड्डो अपमान भुज दंड को करत है दारा से दिल्ली सर द्रुजोधन से मानधारी भोग भोग भूम अंत भूम में बिलत है सिजदे करे अनेक दो बची कपट वेश पोसती अनेकता निवावत है शीस को कहा भयो मल्ल जो पे काटत अनेक दंड सूतनो दंडोत अस टांग अथ तीस को कहा भयो रुगी जो पे डाजो रहे उर्धमुख मानते नाम बुंडने हो रायो आद ईस को कामना अधीन सदा दामना प्रवीण एक भावना विहीन कस पावे जगदीश को शीस पट कत जाके कान में खजूरा था से मुंड छट कत मित्र पुत्र हूं के शोक सो आंख को जरैया फल फूल को भचैया सदा बन को ब्रह्मिया और दूसरो न भूक सो कहा भयो भेड़ जो खसत शीस वृक्षन सो माटी को भचैया बोल पूछ लीज जो कसो कामना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना विहीन कैसे भेट पर लोक सो नाचोई करत मोर दादर करत शोर सदा घन घोर घन करोई करत है एक पाए ठंड सदा बन में रहत वृक्ष फूक फूक पां भूम श्रावक धरत है पाहन अनेक जुग एक ठौर बास करे काग और चीन देश देश विचरत है ज्ञान के विहीन महादान में नहु जलीन भावना यकीन दीन कैसे कह तरत है जैसे एक स्वांगी कहूँ जो किया बरा की बने का बहू संन्यास भेष बन के दिखावई कहूँ बन हाजी कहूँ बैठे लाए तारी कहूँ लोभ की खुमारी सो अनेक गुण गावई कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पे लगावे बारी कहूँ दंड धारी होय के लोग न भ्रमावई कामना अधीन पर्यो नाचत है नाचन सो ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोक पावई पंच बार गीतर पुकार पर शीत काल कुंजर अगत अनेकता पुकार ही कहा भयो जप कल वत्र लियो कांसे बीच चीर चीर चोरटा कुठारन सो मार ही
कहा भयो फांसी डार बूढ़े जड़ गंग धार डार डार फांस ठग मार मार डार ही डूबे नरक धार मूड ज्ञान के बिना विचार भावना विहीन कैसे ज्ञान वो विचार ही ताप के सहित जो पे पाइये अतापनाथ तापना अनेकतन घायल सहत है जाप के गियत जो पे पायत अजाप देव बूदना सदीव तुही उचरत है नभ के उड़त जो पे नारायण पाइयत अनल आकाश पंच डोल वो करत है आग में जरत कतराण की परत कर पताल।

एक ही स्वरूप सब एक ही बनाओ है। जैसे एक आग ते कनु का कोट आग उठे न्यारे न्यारे हो के फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत है, धूर के कनु का फिर धूर ही समाएंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहेंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट हुए, ताही ते उपज सब ताही में समाएंगे। केते कछ मछ कते उनको करत भच, केते अच वच हो सब पच उड़ जाएंगे। केते नब बीज अच पच को करेंगे भज, के तक प्रतच हो बचाए खाए जाएंगे। जल कहाँ थल कहाँ, गगन के कौन कहाँ, काल के बनाए सब काल ही चबाहेंगे। तेज ज्यो तेज में अतेज जैसे तेज दिन, ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। कुकत फिरत के ते रोवत मरत के ते, जल में डुबत के ते आग में जरत है। के ते गंग बासी के ते मदीना मकानी वासी, के तक उदासी के भ्रमाई फिरत है। करवत सहत के ते बुम में गड़त के ते, सुअ पे चढ़त के ते दुख को भरत है। ज्ञान में उड़त के ते जल में रहत के ते, ज्ञान के विहीन जग जा रही मरत है। शोध हर देवता विरोध हर, दानव बड़े बोध हर, बोधक प्रबोध हर, जापसी घास हर, चंदन लगाए हर, चोआचार बोझ हर, पाहन चढ़ाए हर, लापसी गाह हर, गोरन मनाए हर, मड़ी मटली बहार, वीतन लगाए हर, छापसी गाय हर, गंधर्व बजाए हर, किन्नर सब पच हर, पंडित तपंत हर,

ना मित्रे सबूते भविखे भवाने अचित्रे न रायंग न रंगंग न रूपंग न रेखंग न लोभंग न जोभंग भूतंग अपेखंग न सत्रंग न मित्रंग न नेहंग न गेहंग सदेवंग सदा सर्व सर्वत्र सनेहंग।

प्रज्ञागं सर्वभूपं कहूं नेह ग्रहं कहूं देह दोखं कहूं औखदि रोग के सोख सोखं कहूं देव विद्या कहूं दैत बाने कहूं जच्छ गंधर्व किन्नर कहानी कहूं राजसी सातकी तामसी हो कहूं जोग विद्या धरे तापसी हो कहूं रोग रहता कहूं जोग जुगतं कहूं भूमि की भुगत मैं भरम भुगतं कहूं देव कन्या कहूं दानवी हूं कहूं जच्छ विद्या धरे मानवी हूं कहूं राजसी हूं कहूं राजकन्या कहूं सृष्टि के पृष्ठ के रिष्ट पन्या कहूं वेद विद्या कहूं व्योम बानी कहूं कोक की काव कथा कहानी कहूं अद्र सारंग कहूं भद्र रूपं कहूं मद्र बानी कहूं क्षुद्र स्वरूपं कहूं वेद विद्या कहूं काव रूपं कहूं चेष्टा चार चित्रं स्वरूपं कहूं परम पुराण को पार पावे कहूं बैठ पुराण के गीत गावे कहूं शुद्ध सेखं कहूं ब्रह्म धर्मं कहूं वृद्धावस्था कहूं बाल कर्मं कहूं ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूं नेह देहं कहूं त्याग गृहं कहूं जोग भोगं कहूं रोग रागं कहूं रोग हर्ता कहूं भोग त्यागं कहूं राजसाजं कहूं राजरीतं कहूं पूर्ण प्रज्ञा कहूं परम प्रीतं कहूं आरबी तोरगी पारसी हूं कहूं पहलवी वस्तवी संस्कृति हूं कहूं देश भाख्या कहूं देव बानी कहूं राज विद्या कहूं राजधानी कहूं मंत्र विद्या कहूं तंत्र सारं कहूं जंत्र रीतं कहूं शस्त्र धारं कहूं होम पूजा कहूं देव अर्चा कहूं पिंगुला चारणी गीत चर्चा कहूं बीन विद्या कहूं गान कीर्तन कहूं वलेज भाख्या कहूं वेद रीतं कहूं नृत्य विद्या कहूं नाग बानी कहूं गारुड़ गूढ़ कथा कहानी कहूं अक्षरा पक्षरा मच्छरा हो कहूं वीर विद्या भूतं प्रभा हो कहूं छैल छाला धरे छत्रधारी कहूं राज साजं धरे

छूत मतंगन का दबियादा नाद गतंगन खेद वेद छेद नरंग जे चार चतुर्देश चक्र फिरंग जे राग न रंग न रेख रुगंग जे शोक न भोग न जोग जुगंग भू भंजन गंजन आदि सिरंग जे बंदत देव देव नरंग गण किन्नर जश भुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभा अन गंज प्रतंग जे पार न पावत पूर्म तंग अनखंड स्वरूप दंड प्रभा जय जम पद वेद पुराण।

भंज भंज जानिया भूत भूत है सदा गंज गंज मानिया अदेव देव है सदा भेव भेव नाथ है समस्त सिद्ध वृद्ध दास देव सर्व साथ है अनाथ नाथ नाथ है अभंज भंज है सदा गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्धता अनूप रूप स्वरूप है अछिज तेज मानिए सदीव सिद्ध शुद्धता प्रताप पुत्र जानिए न राग रंग रूप है न रोग राग रेख है अधोग दाग दग है अभूत ब्रह्म भेक है न तात मात जात है न पात चिहन वर्ण है अदेख शेख भेक है सदीव विश्ववर्ण है विश्वंबर विश्वनाथ है विशेख विश्वभरण है जिमी जमान के विखे सदीव करम भरम है अद्वैख है अभेक है अलेख नाथ जानिए सदीव सर्वठौर में विशेख अन्न मानिए न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई पुराण यो पुराण नित नित कह बतावई न कर्म में न धर्म में न भरम में बताइए अगंज आदि देव है कहो सुकैस पाइये जिमी जमान के विखे समस्त एक ज्योत है न बाढ़ है न घाट बाढ़ होत है न हान है न बान है समान रूप जानिए मकीन यो मकान प्रमाण तेज मानिए न देह है न गेह है न जात है न बात है न मंत्र है न मित्र है न

न जच है न गंधर्व है न नर है न नार है न चोर है न साव है न साह को कुमार है न ने है न गे है न देह को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छल को मिलाओ है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को स्वरूप है न राग है न रंग है न रेख है न रूप है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छाया को मिलाओ है न राग है न रंग है न रूप है न रेख है न कर्म है न धर्म है अजन्म है अभेद है न तात है न मात है अख्याल खंड रूप है अछेद है अभेद है न रंग है न भूप है परे है पवित्र है पुनीत है पुराण है अगंज है अभंज है करीम है कुरान है अकाल है अपाल है ख्याल है अखंड है न रोग है न शोक है न भेद है न भंड है न अंग है न रंग है न संग है न सात है प्रया है पवित्र है पुनीत है प्रमात है न सीध है न सोच है न घ्राम है न काम है न लोभ है न मोह है न क्रोध है न काम है न देव है न दैत है न नर को स्वरूप है न छल है न छिद्र के

अछेद छेद है सदा गंज गंज गंज है अभूत भेक है बलि रूप राग रंग है न द्वैख है न भेक है न काम क्रोध कर्म है न जात है न पात है न चित्र चिहन वर्ण है बेअंत है अनंत तेज जानिए अभूम अभिज है सदा छिज।

पी नाराध पी करंत सेव है सदा सिद्धस्पति तपस्वती वनस्पति जपस सदा अगस्त आद जे बड़े तपस्तपे बिसेखिये बेअंत बेअंत बेअंत गो करंत पाठ बेखिये अगाध आद देव की अनाद बात मानिए न जात बात मंत्र मित्र शत्रु स्नेह जानिए सदीव सर्वलोक के

सर्व ठार रहे हो विराज राज राज प्रवीण जय श्री गंधर्व देवदानो न ब्रह्म क्षत्रिय नमाहे वैसनंगे बिखे विराजे सूत्र भी वह नाहे गूढ़ गौड़ न भील भी कर ब्रह्म शेख स्वरूप रात दिवस न मथ उर्द न भूम आकाश अनूप जात जन्म न काल कर्म न धर्म कर्म विहीन तीर्थ जागरण देव पूजा गौर के न अधीन सर्व सबद बतार के दर जानिए जह जोत शेष नाम सहंस वर्ण नेत पूरण होत सोज सोध हटे सब असुर विरोध दानव सरब गाय गाय हटे गंधर्व गवाए किन्नर करब

दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आद देवा खंड भूमा का चले थले मैं जपत जाप मंड श्रेष्ठ चार विचार जेत जानिए सब चार आद देवा पार श्रीपद दुष्ट पुष्ट प्रहार अन्नदाता ज्ञान ज्ञाता सर्व मान महेंद्र वेद व्यास करे कई दिन कोट इंद्रोपेंद्र जन्म जाता कर्म ज्ञाता धर्म चार विचार वेद भेव ना पावई शिव रुद्र ओमुख चार कोट इंद्र उपेंद्र व्यास सनक सनत कुमार गाय गाय थके सबगुण चक्रत भे मुख चार आद अंत न बध जाको भूत भव भवान सत दुआ पर तृतीया गल

आसुरी बिहंडन दुष्ट निगंदन पुष्ट उदंडन रूप ते चंडा सुर चंडन मुंड बिहंडन धूम्र बिनुंसन महक मथे दानो प्रहारण नरक निवारण अधम उदारण उर्ध अधे जय जय हो सीमा खासुर मर्दन रमक वर्दन आदृते डावरूड वंगे बबर बंगे बुजा फरंगे तेज बरंग लंकुड़िया।

घंट का विराजे रुण बाजे भ्रम भाजे सुनत सुरंग कोकिल सुन लाजे किल बिग बाजे सुखो बुराजे मध उरंग दुर्जन दल दजे मंथन रिछे सभ न भजे रूह रणंग जय जय हो सीमा खासुर मर्दन चंड चक्रतन आद गुरंग चाचरी प्रचोधन दुष्ट विरोधन रोष अरोधन क्रूर वृत्य धूम राज विधुन संप्रलय प्रजुन संजय।

डुगडुकी दमंगे बांग बबंगे हु जाफरंगे शुद्ध गते जय जय हु सीम खासुर मर्दन आद जुगाद अनाद मते तछरा सुर मारण नरक निवारण बति दुधारण एक भटे पापान बिहंडन दुष्ट प्रचंडन खंड।

जिह जात पात नहीं भेद भरम जिह रंग रूप नहीं एक धर्म जिह सत मित्र दो एक सार अच्छा स्वरूप अविचल पार जानी न जाय जिह रूप रेख कहे बास तास कहे कौन भेख कहे नाम तास है कवन जात जिह सत्र मित्र नहीं पुत्र भ्रात करुणा निधान कारण स्वरूप जिह चक्र चिन्ह नहीं रंग रूप जिह खेद भेद नहीं कर्म कार सब जीव जंत की।

और की बात कहा कह दो सौ सौ पेट ही के बट बीज बचाव है। दक्ष भुजंग सो दानव देव भेव तुम्हें सब ही कर ध्यावे। भूमा काश पताल रसातल दक्ष भुजंग सफै सिर न्यावे। पाए सके नहीं पार प्रभाहु को नेत ही नेत भेद बतावे। खोज थके सब ही खुजी असुर हार परे हर हाथ न आवे। नारद से चतुरानंद से रुमनारिक से सब हूँ मिल गायो। वेद कतेव न भेद रखियो सब हार परे हर हाथ न आयो। पाए सके नहीं पार उमा पद सिद्ध सनात सनंदन ध्यायो। ध्यान धरो देह को मन में जेह को अमितोज सब जग छायो। वेद पुराण कतेव पुराण भेद निर्पाण सब पजहारे। भेद न पाए सक्यो न भेद को खेदत है अनछेद पुकारे। राग न रूप न रेख न रंग न साक न शोक न संग तिहारे। आध अनाद अगाध बेग अद्वेग जप्यो तिन ही कुल तारे। तीर्थ कोट किए स्नान दिए बहुदान महाव्रत धारे। देश फिर कर भेस्त बोधन के सरे न मिले हर प्यारे। आसन कोट करे अष्टांग धरे बहु न्यास करे मुख कारे। दीन दयाल काल भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे। तव प्रसाद कपित अत्र के चलैया छित छत्र के धरैया छत्र धारियो के छलैया महासत्रन के साल हैं। दान के दिवैया महामान के बढ़ैया अवसान के दिवैया हैं कटैया जम जाल हैं। युद्ध के जितैया विरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के दिवैया महामान हूँ के मान हैं। ज्ञान हूँ के ज्ञाता महाबुद्धता के दाता देव। काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल है। पूर्वी न पार पाव हिंगुला हिमाल ध्याव। गोर गर तेज गुण गावे तेरे नाम है। जोगी जोग साधे पौन साधना के तेग बांधे। अरब के अरबी आराध तेरे नाम है। फरा के फिरंगी माने कंधारी गुरे सी जाने। पच्छम के पच्छमी पछाने निज काम है। मरटा मंगेले तेरी मन सो तपस्या करे। देड़ वह तिलंगी वह जाने धर्म धाम है। बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली। दिल्ली के दिल वाली तेरी आज्ञा में चलत है। रोह के रूहेले माघ देश के मंगेली बीर। बंग से बुंदेले बाब पुंज को मलत है। गोखा गुण गावे चिन्ह मचीन के शीस न्यावे। तिब ते ध्याय दुख देह के दलत है। जिन्हें दोहे ध्यायो तिन्ह पूर्ण प्रताप पायो। सर्व धन धाम फल फूल से फलत है। देव देव तान को सुरेश दानवान को महेश। गंग धान को अभेश कहियत है। रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण। और काहु पे न दीन साध दीन कहियत है। पाई ये न पार तेज पुंज में अपार। सर्व विद्या के उदार है अपार कहियत है। हाथी की पुकार पल पाछे पहुँचत ताहे। चीटी की चिंगार पहले ही सुनियत है। कहते इंद्र द्वार कहते ब्रह्मा बुखचार। कहते कृष्णा अवतार कहते राम कहियत है। कहते ससरासी कहते सूरज प्रकाशी। कहते मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है। कहते महादीन कहते व्यास से प्रवीण। कहते कुमेर कुलीन कहते जच कहियत है। करते हैं विचार पैना पूरण को पावे पार। ताहित अपार निराधार लहियत है। पूरन अवतार निराधार है। न पार अवार पाई है न पार वह अपार के बखानी है। अद्वय अविनाशी परम पूर्ण प्रकाशी महारूप हूँ के राशि है। अनासी के मानी है। जंत्र हूँ न जात जागी बाप हूँ न मायता की। पूर्ण प्रभा की सोचा के अनुमानी है। तेज हूँ को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है। निजंत्र के जानी है। तेज हूँ कुतर है के राजसी को सार है। शुद्धता को घर है के सिद्धता की सार है। कामना की खान है के साधना किसान है। विरक्तता की बान है के बुद्ध को उदार है।

को बहार है, सिद्ध को स्वरूप है, के बुद्ध को विभूत है, के क्रुद्ध को अभूत है, के अक्षय अविनाशी है, काम को कुनिंदा है, के खूबी को दिहंदा है, गनी मन गरिंदा है, के तेज को प्रकाशी है, काल होंगे काल है, के सत्रण के साल है, के मित्रण को बोध है, के वृद्धता की बासी है, जो हूं को यंत्र है, के तेज हूं को तंत्र है, के मोहनी को मंत्र है, के पूर्ण प्रकाशी है, रूप को निवास है, के बुद्ध को प्रकाश है, के सिद्धता को वास है, के बुद्ध हूं को घर है, देवन को देव है, निरंजन अभेव है, अदेवन को देव है, के शुद्धता को सर है, जान को बचैया है, मान को दिवैया है, जमजाल को कटैया है, के कामना को कर है, तेज को प्रचंड है, अखंडन को खंड है, महीपन को मंड है, ये श्री है नर है, विश्व को भरण है, के आपदा को हरण है, के सुख को करण है, के तेज को प्रकाश है, भाई है न पार पार वार हूं को पार जाऊ की जत विचार सो विचार को निवास है, हिंगुला हिमालय का वह बसी हल विधा वे पूर्व बिना पार पावे असते अनाश है, देवन को देव महादेव हूं के देव है, निरंजन अभेव नाद अद्वय अविनाशी है, अंजन विहीन है, निरंजन प्रवीण है, के सेवक अधीन है, कटैया जम जाल के, देवन के देव महादेव हूं के देवनाथ, भूम के भुजैया है, मोहैया महाबाल के, राजन के राजा महासाज हूं के साजा महाजोग हूं के जोग है, दरैया द्रुम छाल के, कामना के कर है, के बुद्धता को हर है, के सिद्धता के साथी है, के काल है कुचाल के, छीर कैसी छीरावत छाज कैसी छतरा नेर, छपा कर कैसी छप कान द्रिक कूल के, हंसनी सिसी हरुम हीरा सी हुसैनाबाद, गंगा कैसी धार चली सातो सिंध रूल के, पारसी बलाऊ गढ़ रूपा कैसी रामपुर, सोरा सी सुरंगाबाद नीके रही झूल के, चंपा सी चंदेरी गुड चांदनी सी चांदागढ़, कीरत तिहार यही मालती सी फूल के, फटक सी कैलाश कमाऊ गढ़ कांसी बुर, सीसा सी सुरंगाबाद नीके सोहियत है, हिमा सी हिमालय हर हार सी हल्ला बनेर, हंस कैसी हाजीपुर देखे मोहियत है, चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रगीर, चांदनी सी चंदगढ़ जोन जोहियत है, गंगा सम गंगधार वकांसी बिलंदवाद, कीरत तिहारी की उजियारी सोहियत है, फरासी फिरंगी फरासी के दुरंगी, मकरान के मृदंगी तेरे गीत गाइयत है, भकरी कंधारी गोर गखरी गलतेजाचारी, पौन के आहारी तेरो नाम ध्यायत है, पूरब पलाव काम रूप कमाऊ सर्व ठौर मैं विराज, जहां जहां जाइयत है, पूर्ण प्रताप चंद्र मंत्र तेता विनाश की।

0: और फिर की होया कवि वचन कर दे कि जोधपुर दे अस्थान ते उस इलाके विच महाराज सच्चे पातशाह जी चाला पांदे
1: मिलियो अजीत सिंह बलहेरे
0: और बड़ी श्रद्धा सहित अपना खिरदे दा बल लै करके अजीत सिंह।

दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रणघाता जे अस दुष्टौ सरनी परे तिनके दुष्ट दुखित भय मरे।

गुरपुरा भेटो वडभागी मने पया प्रकाशा कोई ना पहुंचन हारा दूजा अपने साहेब का परवासा अपने सतगुर के बलिहार आगे सुख पा

ऐसा समा मिले कलगियां वालिया सानू फिर मिले लख वारी तेरे चरणा तो जाइए लख वारी बलिहारी महापुरख सिंह साहब कृपा की 11 दिन दे महापुरखां ने सवा लख जप जी दे जाप कराए संगतां सेवा सिमरन कीता तन मन होए निहाल कलगी धर जी इदां ही कृपा रखियो जोड़ी रखियो चरणा दे नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह।